0: तो कम नहीं ने मेल दंश के मेल दे हाँ हाँ मगा इतना
1: वो जो सब दोनों दंश चार दिन शराब
0: ते स्क्यार यो वो लुसना सेल्कट
1: या
0: तो कम और शायद कोई मान
1: हाँ मगा इतना
0: या यो भी
1: हेलो
0: हाउ डी गुड हाय
1: हेलो हाँ सर हाय